एक गल कभी ना भुलियो कि कवि संतोख सिंह जी तक इथों तक कि जदों असी आप जी नूं भी ज्ञात होना है अज तो 30-32 साल पहला भी जदों लोग किते गुरु अर्जुन देव जी शहीदी की गल करते सन ते कल्ली कीती जांदी सी कि चंदू दे रिश्ते करके शहीदी हुई रिश्ता मोड़िया पर नवी खोज ने सरदार कपूर सिंह ने भाई साहब भाई वीर सिंह उन्हां ने जिन्नी देर तक तोज के जहांगीरी किताब नहीं मिली जहांगीर की स्वय जीवनी उन्नी देर तक चंदू का भरनी बनिया रहा ते जिदन ओदी जीवनी विचों मिल गया कि गुरु अर्जुन देव नाम का एक हिंदू उन्हें शब्द वरते सन ब्यास के किनारे एक बातले दुकान आप शब्द वरने झूठ की दुकान बना के बैठा कई पीढ़ियां तो इन्हों की दुकान गर्म सी हिंदू इन्हों के सिख सन भोले भाले मुसलमान भी मूर्ख इन्हों के सिख बन गए चिरा तो मेरे मन विच ख्याल सी इस झूठ की दुकान नू बंद करना चाहिए जदों पहरा सामने आया तो विद्वान हरकत विच आए उन्हें देखिया भी इस केवल चंदू नहीं चंदू एक एम आ आम अहलकार है एदे कहते गुरु अर्जुन देव जी शहादत किवें मैं ये वैसे शहादत का विषय उथे फिर खोज की गई शेख अहमद सरहंदी देखो जदों फतेहगढ़ साहब जाने हैं ना तो थले एक मजार ने कबर मसीता टाइप ने उथे उस शेख अहमद सरहंदी की कबर है जिन्हें गुरु अर्जुन देव नू शहीद करन विच पूरा तान ला दिता सी बीरबल भावें पहला मौत हो गई पर यतन उन्हें भी किया पिरथिए ते मेहरवान की गल कभी ना भुलीए केवल चंदू नहीं जेड़ा बंदा सुली खां नू चाड़ के अपने सक्के भरा नू कतल कराना चाहता है ते की शहादत विच उहदे परिवार का हथ नहीं होगा गुरु अर्जन साहब कह के गए सुली ते नारायण राख सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे सुली कोई मुआ ना पाक फिर गल स्पष्ट हो गई कि चंदू भी एक विच है पर चंदू तो बिना बहुत होर ने जेड़े गुरु अर्जुन देव नू शहीद कराने ते तुले हुए सन आओ देखो आप जी ने वाकया गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हो गई कवि संतोख सिंह ने केवल दर्शाया है कि सब कुछ चंदू ने किया है ते मैं यतन करांगा इस प्रसंग नू कांट छांट के गुरमत की रोशनी विच पेश किया जाए अज आप नू पता है कि चंदू की बच्ची का रिश्ता मुड़ गया इस करके नहीं कि गुरु साहब नफरत कर दे जदों ने चुबारी की इत मोरी नू लान की गल कही गुरु के सिखो गुरु नानक साहब का कर किसी बादशाह का मुथाज नहीं है तुसी हैरान होवोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जदों अजे 4 साल दे सन ते पटना साहब की धरती से नवाब की असवारी आई ते अगे आने वाले ने कहा झोके नमस्कार करो सिजदे करो ते गुरु कलगीधर जी ने छोटे छोटे बच्चों नू कहा सजदे नहीं आउंदा पे इनू दंदियां खराओ जदों नवाब नू दंदी खराइया कहिंदे ने परत के गुरु तेग बहादुर जी नू चिट्ठी लिखी गई कि तुहाडे पुत्र गोबिंद ने अज नवाब की असवारी आई ओदी खिली अड़ाई का कर समझाओ ते गुरु तेग बहादुर पता उत्तर की देंदे ने कहिंदे ने गोबिंद जो किया सो भला क्या दिया जे ये हुक्मनामा है गोबिंद जो किया सो भला किया कहन लगे सरकारी अहलकार आए अव्वल ता मथे नहीं लाना आए पवांदी देनी सरांदी नहीं के पवांदी खड़े करना सरांदी नहीं क्योंकि बाबा नानक पातशाह है ते पातशाह बादशाह दे दरबार सामने झुकदा नहीं गुरु के सिखो अज देखो चंदू इन्हें अपने वालों धमकी भरिया पत्र भेजे कि जिवें तुहाडे बाप नाल कीता है इसे तरह गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहिंदा तुहाडे नाल कीता जाएगा गुरु हरगोबिंद साहब ने अगों उत्तर दिता घबराई ना कि चेते रख असी कृपाना दो भाइयां ने ते पाइए इस करके ने तेरे वर्गे दुश्मन नूं तेरे वर्गे जालम नूं सोधन दे ले ओ जले गए ने जिहड़े दूत आए सन ओ अज चंदू नूं दसदे ने चंदू बादशाह दे सामने पेश हुंदा है ते केड़ियां केड़ियां गल्लां गुरु हरगोबिंद साहब दे संबंधी कहिंदा है असी अज ये वाचनियां ने भावें समा भूमिका विच ज्यादा लिया है इस करके क्योंकि प्रसंग की लड़ी जोड़नी साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब कृपा करन आओ कुछ मिनट आपां इस प्रसंग नू वाचिए विचार आरंभ करन तो पहला बख्शो असीस और उचारण करो जी।

इससे साधु सुंदर जी अज सतगुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के अवतार धारण का गुरपुरब है। आप जगत गुरु जी ने 1678 बिक्रमी विच वसाख वाली पंचमी वाले दिन अज के सवापैर के तड़के माता नानकी जी के गोद नू भाग लाने वास्ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पंजवें सुपुत्र गुरता गद्दी के मालिक सतगुरु तेग बहादुर साहब का श्री अमृतसर साहब विच गुरु के महलों विच अज अवतार होया है। सब संगतां नू वधाई होवे महाराज अवतार धारण की। जगत गुरु जी अंतरजामी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के पास श्री अकाल तख्त साहब विच दासी के गोद विच महाराज साहब जी जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी माता गंगा जी ने कहा कि सुपुत्र का महाराज साहब जादे का नाम रखो तो महाराज साहब श्री अकाल तख्त साहब आके मत्था टका के महाराज सच्चे पातशाह के चरणों के नाल ला के दासी जिस वक्त हजूर मस्तक टका के गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गोद विच लै करके उठन लगी तो महाराज साहब जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सतगुरु छेवें पातशाह दियां दोवें श्री साहबां जो समय आपदे गल च बह रही हुई मीरी अते पीरी जी दोवें सज्जे ते खब्बे पासे उन्हां दोहां श्री साहबां दे कब्जियां नूं हथ पा लिया महाराज साहब जी। दासी छड़ाउणा चाहुंदी है आप सच्चे पातशाह छड़दे नहीं हन। उस वे महाराज साहब हस के कहने भाव का नाम आप ही विखा लिया है उन्होंने तेग की बहादुरी करनी है।

सेवा कर रहे हैं बाबा जी, बाबा मनी सिंह साहब ने सजरा की आज्ञा पाल के जिन्हें साल महाराज साहब ने उन्हें आयु बख्शी, हमेशा नहीं

करे कि अगे संतां नूं प्रचार कीता उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों विप्र बताई।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां। प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया, सहिदा बेग शरणी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खोह के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी को 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसे नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल। अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरत सुबत जैसा जिस भाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो, यह साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसों न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा है कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसे ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिजनी को इक तुरंग चढ़ायो, ए कुरीत फल सब नूं सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लै के जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उह चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्या थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उन्हूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके सावधान रहे।
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सीतुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे रंग दा

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया कि गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुरु सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज नूं कहिंदे इह कहिजे सिंह तुसीं खड़े कीते आ उत्थे दरवाजे ते मूहरले पासे पहरे ते ओह सारा दान इहदे कोलों खोह लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उहनां नूं
1: आवन जानो बंद करन ते तिज आदक सब संग
0: तो इस कृपा कहिंदे आउणा जांदा ना सारयां दा बंद करता ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओह ना लड़ पे कदे ओह ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नूं सुना रहे हन
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तां किसे दे कहे सुने च नहीं है ये तां ना योग अयोग जानदे ने इस प्रकार दे नाल हुण सिंह तां महाराज दे असूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे ओ जिवें पिछे जे माता जी ने एक वारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दियो मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां भी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दियो जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक है असीं थोड़े साहबजादे हैं पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक उह गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तां तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगागा कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसी अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे ये थोड़े जिहड़े सिंह ने ये अपनी ही मन मर्जियां करदे है
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुम्हारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी काहदा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इन्हें तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारियां चीजां ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंह नछीने निसंग अस उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव कीता उन्होंने निसंग होके आ सारियां चीजां उन्होंने खोह लिया कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलेंद्र बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग दे सरवण कर रहे हां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ।

0: सच्चे पातशाह हे महाराज ये तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ दी कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी ये छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती होगी सब तो क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तू आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगिया वाले थे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी हित हिरन गुर ग्रीव ना फेरे
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नू देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे खड़े मैं होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नू देखिया ते घोड़ा भजाया
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर दई सैसाए
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिंच दी।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तां माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असी इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, ओ सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने बचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इक्को ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे ते बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। इह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, इह कहण दा की फायदा, फिर की बणेगा, गात्रा पा के की बणेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहते आ गल क्यों, आ किवें, इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने इक्को ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो केड़ा बचन कहते।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा है जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहते चलो उन्हों का तो दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण का सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे का अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: अच्छे हुंदे ने, दिमाग भी चंगे हुंदे ने, वैसे भी साफ सुथरे हुंदे ने, सतोगुणी हुंदे ने, ते उन्होंने ही अमर छक लिया वह होर भी चंगे बन जाते ने और मर्यादा एन पूर्ण रूप में कमाउन। फिर तो आखिए भी गुरु का सिंह सज गया, प्रेमी जन बन गया। तो जो उई खाण पीण का महाराज कोई आ जाए थोड़े विच, उहदा थोड़ा ध्यान रख्या करो।
1: पलट मजब पीरन जजै सो पापी परे कूप।
0: महाराज कहने वो देखो मजब नू पलट लवे अपने नू, ब्राह्मण ते पलट के पूजा करे जा करके पीरां दी, ते पीरां नू मन्ने ते होर भी जाके इधर उधर भेख जे धारण कर लवे। ते कई तरह के होंगे ने ऐसे लोग, उधर भी बनी जाना उत्थे भी बनी जाना, इन्हों बंदियां तो कहने यह जे पापी लोगों तो सावधान रहा करो।
1: देस केस धर आन सिक पूजत तुच्छन देव।
0: हुण फिर की कीता उन्हें, देखिया कि इत्थे ठगी चल सकती है, भेस बना लिया, केस रख ले, ते पूजा करदा तुच्छ देवत्यां दी, माड़े मोटियां दी इधर उधर कर ली, मंत्र जे कर ले। ते इस प्रकार यह जे लोग ज्यादातर जिथे सावधानी वरती दी उत्थे तां नहीं आउंदे हैं, पिंडां दे लोकां नूं बहुत खराब करदे ने। पिंडां दे लोकां नूं बस अद्धा को उधरला भेस जिहा बना लैणगे, अद्धा को उधरला भेस जिहा बना लैणगे। उत्थे जे कोई सिख आ गया उहदे मुंह ते कहणगे वाहिगुरू वाहिगुरू, होर आ गया राम राम कर छड्डिया, हाए कोई होर आ गया उत्थे भाई एक है, सारियां फोटोआं ला लैणगे, हरेक दीआं सब दीआं फोटोआं ला के बैठे ने। मेरे अर्गा जाऊगा वे गुरु नानक देव जी हथ करी जाणगे, उधर कर देणगे, ते नौ भी उहो जिहा रलमा जिहा रख लैणगे, विचे नौ इहदा रख लिया भी, विचे राम दा भी रख लिया, विचे रहीम दा भी रख लिया, विचे चल होर दा भी रख लिया, सारे एक है। इउं करके लोकां नूं ऐसे लोकी पखंडी जिहड़े लोक ने महाराज कहिंदे ठगणगे। तुसीं ध्यान रखना इहनां लोकां धागे तवीत जे करके देणगे, लोकां नूं पाणी च फूक जी मारनगे, गऊ नूं पेड़ा जा देण नूं दसणगे। महाराज कहने ओ तुसीं इन्हां ठगियां ते इन्हां चालां तों बच के सुचेत हो के रहो।
1: दाहे ना पानी दीजिए मेरा सिक सुसेव।
0: महाराज कहने इह जे तां पखंडी नूं पाणी भी नहीं देना चाहीदा पीण नूं, उहनूं की लोड़ है पाणी पिआउण दी, इह तां भेखी आदमी है, पखंडी आदमी है, क्योंकि इहदा तां अपना भी कोई धर्म नहीं ते सानूं भी बेधर्मे बणावेगा इह। इस करके महाराज कहने भाई इहदे नालों तां मेरा सिख सुसेव, मेरा जिहड़ा सिख है संगतिया है, अमृत छकिया होया है, जां गुरु घर दा प्रेमी वैसे है, उन्हां दी सेवा करनी सौ गुणा नहीं लखां गुणा चंगी है।
1: केसा तारी भेखिया जीवन के तिन काज।
0: सो जिहड़ा केसा तारी भेखिया है, भेखी केसा नूं धारन वाला है, तो महाराज कहिंदे ने उह चंडाल दे बराबर है। उहने उपजीविका वास्ते जिहड़े केस धारण कीते होए ने, उह तां जीवन दे कम नूं लैंदा भाव अपने रोटी पाणी नूं केस धारण कीते ने।
1: तरे केस चंडाल सम दे दान होए पाज।
0: महाराज कहिंदे उह तां चंडाल वर्गा है, जे उहने केस धारण कर लए ने काहदे लई, दान दी इच्छा वास्ते। इस करके ओ तां जिहड़ा है ना बंदा, ओ तां नरकां नूं आप जाएगा, तुहानूं भी लैके जाएगा नाल, क्योंकि बनावटी है, निष्फल है। इस करके ऐसे बंदियां तों हमेशा लई सावधान, भई दिने चोले जे पा ले, अगराइयां जिहियां करदे फिरदे ने पिंडां जाके, इक ट्रक जिहा लै लैणगे पुराणा जिहा, इक जाऊंगा जीप जिहा, उत्ते होर ही कुछ लिख लैणगे। शाम नूं इत्थे अनाज मंडी च आ के सारी कणक जी बेच के शराब पी लैंदे आ। लुधियाणे तो एक बार आए इत्थे, परचियां जी कटदे, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस सीगा, बड़े बाणे जे पाए हुए उन्होंने, ते कहंदे जी आ खालसा जी आ दिओ जी गुराही। मैं कहा काहदी है, अजकल थोड़ी परचियां चैक कर लिया करो, तो एवें चक्की फिरनगे। कहंदे समराला चौंक छबील लै। मैं समराला चौंक पटियाले च तां नहीं हैगा, इह तां लुधियाणे आ। कहिंदा जी उत्थे ही ला रहे हैं, लुधियाणे ही ला रहे हैं। मैं लुधियाणे लोग है नहीं गए थोनों गुराही देने वास्ते, तुसी किधरों आ गए, देख लो जी थोड़ी मर्जी है कि अगे चले गए। यह जे आज जगराते वाले भी कई यह जे नकली बने हुए ने, दो तीन बार तो परची लैके आए हो। फिर एक बंदे ने मैनू तरीका दस्या, कहिंदा इन्हां नूं पुछो भी जगराता है कि नहीं तरीक नूं, ते थां कि ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਐਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ 100 ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ 100 ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਚੀਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
1: ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਗੋਰ ਨਵਾਨੈ,
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਗੋਰ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਮੜੀਆਂ? ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ

0: सुपते निसमै सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी का है, किन्ना कि इहनां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गद के आ

0: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जिहड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार के जिहड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारयां नूं बुला के लिया इन्हां कोलों अज कुछ प्रश्न पुछने ने
1: सभियन को हकार लियाओ जय जय दीता सिदाओ
0: इन्हां सारयां नूं लै के आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हां दे टिकाणे घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारयां नूं बुला लिया
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण परब जिल कीन अशेच
0: सो जिने महाभारत दे विच्चों द्रोण पुरब सारा जिहड़ा परब है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिने आए हैं
1: ध्यान सिंह दूरदर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्होंने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखिया दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: सप्रत श्री प्रभ गिरा उचारे
0: जिन्ने जाने आके बैठे सन सियाने विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन किया है।

0: फिर सौन वेले वह मंत्र पढ़ लैंदा, फिर उहदे दुआले लोहे दा कोट हो जांदा है।
1: बिन चिंता सुपता सुख पावै, भई भोर भोर निक सावै।
0: फिर जदों सवेर वेला हुंदा, फिर मंत्र पढ़ के अपने लोहे दे कोट नूं हटा के फिर कमरे तो बाहर आ जाता है।
1: इत बासर इत बेकीन, नर नारी सब हो सुन लीन।
0: किन्ने क दिन रातां इस तरह ही लंघदियां रहीआं, सारिआं ने महिलां दे विच नर नारी जो सन बाहर तक यह खबर जिहड़ी है हौली हौली पहुंची कि ब्राह्मण दे अंदर किन्नी शक्ति है।
1: अज अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश।
0: इस करके अजमेर शाह दे कोले ते मंत्रां दे शक्ति दा प्रगटावा लड़की ने माता नूं दस्या, राजे नूं दस्या, अगे उन्होंने मलाणिया नूं दस्या, इस तरह इहदे मंत्रां दी ताकत नूं देखिया उसने।
1: कयो मलेच्छन सब समझाए, इसको जानो सुगम उपाए।
0: जिहड़े मलेश लोग सन जिन्हां ने अपनी सभा दे विच मिलाउणा सी उहनूं, उह कहण लगे राजा इहदा तां सौखा ही इलाज है, जिहड़ा तपस्या मंत्र जंतर तंत्र ने इह तां सौखे ही टुट जांदे हन।
1: तनक तमक इसे पिलावो, सब हिंदन के मंत्र नसावो।
0: कहने तनक मात्र थोड़ा जिहा तमाकू इहनूं पिला दिओ, मंत्र जिहड़े ने हिंदुआं दे उह सारे जिन्ने पढ़े होए सिखे होए मंत्र कम नहीं करदे तंबाकू दे सामने, क्यों अपवित्र चीज है, इस करके ही अपवित्रता तो बचा जांदा है।
1: किसो मंत्र की शक्त न रहे, तनक तंबाकू हिंदू जे छुए।
0: किसे मंत्र दी जिहड़ी ताकत नहीं रहिंदी जे तनक तंबाकू सेवी है। तनक मात्र भी तंबाकू का कोई सेवन करता है, देव पितर तज जाए, पानी ताके हाथ का मदरा सम हो जाए।
1: अस मसलत कर कै समझाए, सभा बिखै दिजलीन बुलाए।
0: इस तरह की जी सलाह करके ये ब्राह्मण जेड़ा सी इस नूं सभा दे विच बुला लिया।
1: सबन मलेचन आदर कीना, निकट बिठाए तपो थन लीना।
0: सारिया मुसलमाना मलेच्छा ने ब्राह्मण का बड़ा ही सत्कार किया, आओ जी बैठो जी। तो इस तरीके नाल वो जेड़ा बहुत तपस्वी बंदा सी उन्हूं ठगण वास्ते उहदा धर्म तोड़न लई इन्हां ने बहुत सारा मान सम्मान दे के पहला एक बना ली स्कीम, उहदे आधार ते इन्हां ने इन विच बिठा लिया।
1: कंचन को हुक्का बनवायो, तिज दिखाए गुर संग मिलायो।
0: सोने का हुक्का बनवाया, शाही हुक्का, अते उहदे विच ब्राह्मण दिखा के गुड़ मिला दिता। सो जिन्हां दे विच तंबाकू पहले ही मिलाया होया सी, कहिंदे बस इहदे च आपां कुछ नहीं पाउंदे, आ थोड़ा जिहा गुड़ पाया है।
1: अपर बिपर के हाथ गहाए, तिसके आगे धर्यो बनाए।
0: एक नकली जिहा ब्राह्मण खरीद लिआंदा पैसिआं च, कहिंदे तूं ऐं करी तैनूं असीं फड़ावांगे हुक्का पहला, तूं फड़ के फिर इहनूं फड़ाई तपस्वी नूं, इह भरोसा करेगा कि हां जी इह वी तां मेरा ब्राह्मण भाई है, ते इस करके जद इहनूं कुछ नहीं होया तां मैनूं की हो सकदा।
1: रिखी पिख कै सब संग उचारा, मैं न करो ए अंगीकारा।
0: उस वक्त वो ऋषि, ऋषि उन्हूं कहिंदे ने जिहड़ा रिखीक हुंदियां इंद्रियां, जिहड़ा अपनियां दसों इंद्रियां नूं काबू कर ले उन्हां दा ऋषि है। इस करके महापुरश जां कह लो तपस्वी कह लो ऋषि कह लो, इहने एक वार तां साफ जवाब देता सारिआं नूं कि मैं नहीं इह पींदा, मैं अंगीकार नहीं करना माड़ी चीज नूं।
1: भलो के बुरो नहीं सुध कोए, नहीं स्पर्शो दोष जे होए।
0: कहने चाहे ये चीज भली है चाहे बुरी है, चाहे दोष है जां कोई नहीं दोष है, मैं इनू अंगीकार नहीं करदा।
1: सुन कर जे मलेच्छ बुद्धवंते, हित निर्दोष।

0: मैं सच गल सुना हां ये कोई झूठी गल ना आख्यो भी यह झूठी गल है बिल्कुल गुरु ने मैनू यह सारा आप दसिया है।
1: कलयुग कहता आदम ब्रह्मा जनता कीन
0: कलयुग कह लग्या महाराज शुरू दे विच जदों ब्रह्मा जी ने जनता हुंदा जन्म देना जदों सानू पैदा किया चारां भरावां नू बनाया
1: कहे सकल हम है अधिक हंकारी लख लीन
0: सो ये सारे जाने हंकारी असी सारे आखिए भी असी वड्डे आ तां ब्रह्मा जी ने सानू हंकारी जाणिया
1: तब ब्रह्मा समझाए हो तुमरा न्याय समाज
0: हां ब्रह्मा जी ने कहा हे बेटियो तुहाडा जद राज समाज होवेगा तदों न्याय करना ते तुसी किवें करोगे मैनू दसो
1: कै समाद कर मोनोए चितवा पुरख जुराज
0: ब्रह्मा जी आओ कह के समाधि ला के बैठ गए भी दसो तुसी किवें दा न्याय करया करोगे अपने राज दे विच इस तरह जदों कह के बैठ गए युवराज जिहड़ा वड्डा सी सतयुग पहला वो बोलिया
1: एक खरा दूआ हुआ तीजा चौथा सोन
0: कहने पहला सतयुग खड़ा हो गया उठ के त्रेता द्वापर कलयुग चारे जाने असी उठ के खड़े हो गए
1: प्रथम जन्म तो सौंप कर नीत पढ़ाई गुण
0: सो कहने जेड़ा है ना पहला जेड़ा जन्म भाव पिछला जितना भी कीता हुआ कर्म है उस कर्म के मुताबिक मैं सारा कुछ दसिया कि केड़ी मेरी ईती होवेगी पहले जम्मे भाव सतयुग नूं राज सौंप के पढ़ाई हुई नीति पर जेड़ी विचार रंभी है विचारना कीती है वो कलयुग ने सुनाई है
1: विद बूजो क्या वर्तड़े पुत्र करेगा जाए
0: सो उस वक्त विद विधाता ब्रह्मा ने बूझो पुछया क्या वर्तनी पुत्र करेगा जाए सतयुग नूं कहिंदे पुत्र तू जदों राज करेगा दुनिया ते तेरे समय विच की वर्तारा वर्तेगा
1: सोहिया तो मोए टिग हुक्म राज में दाए
0: ओ मैनूं दस के जा वी तू अपने राज दे विच केड़े केड़े लोकां तो कर्म कराएगा तेरा न्याय की होवेगा जो हुक्म राज विच देवेगा
1: सत बोले ओ तब पुरख ने देश देश दी बांट
0: सतयुग बोलिया फिर कहन लग्या जदों कोई बंदा एक बंदा कोई माड़ा काम करेगा कोई कुकर्म करेगा मेरे समय विच ओ पाप एक बंदे नूं नहीं लगेगा दो नूं नहीं लगेगा कोल नूं नहीं लगेगा सो एक जिवें कह लो सूबा है उहनूं नहीं लगेगा एक बंदा जे गुनाह करेगा पूरा हिंदुस्तान नूं मैं दुख देंगा भई एक बंदे दी गलती करके सारयां नूं दुख मिलिया करेगा जिवें इहदे च तां साखी नहीं आई वो बेणू नामे एक राजा होया सतयुग दे विच उदों थोड़ी जी गिणती घट हुंदी पापियां दी सतयुग हुंदे एक अद्धा परसेंट ही बंदे इहे जे गंदे सीगे कलयुग विच तां इहे जे बंदे 90-99% ही होए बैठे आ सो कहिंदे बेणू नामे राजे ने लड़कियां पाणी भर रहियां सी खूह दे उत्ते तो अच्छी लड़की देख के चुक के लै गया माड़ा कर्म कर दिता तां सतयुग ने की न्याय किया 10,000 वरा पूरे हिंदुस्तान दे उत्ते मिट्टी बरसी मिट्टी उत्तों डिगदी रहिंदी सी हर वक्त रेता पैंदा रहिंदा दुनिया नूं परेशानी बहुत उठाउणी पई क्यों एक बंदा गलती करेगा तां सारे मुल्क नूं सजा मिलेगी सतयुग ने यह कहा है
1: जिसे देश ता का लिखो पाप पुन की सांट
0: सो कहंदे फिर इस तरीके नाल मैं जिहड़ा कर्म करांगा ना वो तुसी यों जान लो कि मैं कर्म दी सजा किवें देवांगा तब सतगुर बोलिया कि जे पाप पुन किसे देश दे पुरख ने कीता है सो मैं उहदे अपने देश विच वंड देंगा जिस देश ने पाप पुन कीता उस देश दा लिख लवांगा ते उस देश नूं पाप पुन दा सांट हुंदा बदला देवांगा सो जिवें सतयुग विच कितें एक देश तां है नहीं सी होर भी देश बड़े सी ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ।

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कह के संदेश जो,
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीर्ति है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीर्ति तो बहुत, असीं किवें कह सकदे आ? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीर्ति लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लै के मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा,
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: सुन सुन कर सुजस बडेरा,
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन के ने, छंद बंद सुंदर गत लेने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच, ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।